0: कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो निकल 90.4 एफएम, आवाज तुमचा।
1: नमस्कार नगरकर, मी अस्मिता दाते, आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 एफएम, आवाज तुम।

0: कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।
1: मचल

0: मैं जाऊं।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू सर।

0: अपने जाओ।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों बैठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम ना मानो तो जाने दो। तोबा तोबा क्या होगा होना है जो वो होगा होता है जो

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात नगर डायरी, फक्त रेडियो नगर 90.4 एफएम वर।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा.
1: तुम्ही ऐकत आहात नगर डायरी फक्त रेडिओ नगर 90.4 एफएम वर.
2: उधर तुम हसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है. उधर तुम हसी हो